0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झोलै फटाका जिठ का कना हो बाबा फिर उस्ता बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान नि हेरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी राहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई ठ कबु पेन्सिल हेरा कई ठ कबु झोलै फटा कई ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम थ
0: कहाँ से लन बो ओटा का हूँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरे न कबु पेन्सिल रहिथिन न झोला फाटल हुइथिन कहिएक आनल झोला जस काटस बाटिन ई बुढो ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याको थुइ
1: ल्या ल्या मैं अब भी जइबु रगैया झोला उद्योग में
2: रगैया झोला उद्योग हमार यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
4: दाजु हेर्नुस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराख्या छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
5: के गरौ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
4: दाइ बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
5: तैले भन्छस् भने लौ जाम न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
6: सत्कार मेडिकल सेवा का खास सेवा ओपीडी सेवा वीडियो एक्सरे सेवा लैब अर्थात प्रयोगशाला सेवा ईसीजी सेवा मेडिकल सेवा ईएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जांच समय बिहान 7 बजे देखि बेलुका 7 बजे सम्म डाक्टर

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल रेठ कबु झलै फटाका आजिठ काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नि हेरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लन बो ओटो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरे थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब यही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाई, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू वहाँ पठाई तो यहाँ है ई पत्रिका में लिखल।

0: बालिका तीन नम्बर वाड़ावासी दादू भैया दीदी बहिने उखरे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बांध देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बांध के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुई से एक जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुकरा ले पड़ना बा
1: जानकी गाँव पालिका तीन नम्बर वाड़ा कार्यालय लाइकपुर
2: टिकापुरको विकासका लागि के गर्दैछ नगरपालिका
3: नगर विकासका लागि नगरवासीको दायित्व के हुनुपर्छ
4: नगर विकासमा नागरिकको सहभागिता कसरी बढाउने र नगरपालिकाको कारबाही र सेवा प्रभाव बारे जानकारी दिने कार्यक्रम हाम्रो टिकापुर
2: टिकापुर नगर कार्यपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो टिकापुर हरेक साताको बिहिबार बिहान 7:30 बजे र पुनः प्रसारण
5: बिहिबार दिउँसो 3 बजे सुन्न सक्नुहुनेछ।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी की राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org

0: ओआरजी मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रोमा फेसबुक तिरहाल बाटी खोज खबर शुरू गरी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से शुरू पश्चिममा चार प्रादेशिक अस्पताल हे शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसँगै आबद्ध गर्न सरकारको निर्णय सुनकी मूल्यमा उच्च समेत मूल्य बढ़ला कोर्से व्यापार सन्तोषजनक नै हुल टीकापुर व्यापारी के कहाई पूर्वानुमानमा आधारित विपद प्रतिकार्य हे स्थानीय तहसम संस्थागत गर्न प्रतिबद्धता हो ग्यास लुकैन धेर मूल्य लेना होकरन हदै समके कार्यवाही गर्न सरकार के दावी आप पूरा खबर हाल देशभर मनसुनी वायु के प्रभाव रहल बा जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मनसून की न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास मरलक बताइल बा कोशी मधेसो बागमती प्रदेश लगायत के बाकी हिमाली तथा पहाड़ी भाग में साधारणतया मौसम बदलल बा कलसे तराई भाग में अधिकांश स्थान में मौसम बदलती रहल मौसम मुख्यतया सफा रहना बा बागमती प्रदेश के कुछ स्थान में मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुई दिवा कोशी मधेश लुम्बिनी प्रदेश के एक दुई स्थान में फिर हल्का वर्षा हुई रहलवा महाशाखा के अनुसार आज दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलनवा कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णालियो सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भेग में कुछ स्थान में मध्यम पानी पर्ना हिमपात की संभावना बा कोशी बागमती प्रदेश के पहाड़ी भाग में ढेर गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भाग में कुछ स्थान में मध्यम पानी पर्ना संभावना रहल बा तराई के कुछ स्थान में भर मध्यम पानी पर्ना संभावना बा शंकर के आसरा के देशभर साधारणतया मौसम बदलने बा कल से हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में मध्यम खाल के पानी पर्ना संभावना बा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार माठत के चारथो प्रादेशिक अस्पताल है कैलाली की गेता स्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संगे आबद्ध गर्न निर्णय करल बा विश्वविद्यालय से यह शैक्षिक सत्र से लेके एमबीबीएस सहित के चिकित्सक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न तैयारी करती रहल बेला मापदण्ड पूरा गर्न प्रदेश सरकार से यी निर्णय लिहल के हो मनोगेता म समेत 300 सैया के शिक्षण अस्पताल तत्काल संचालन करने लक्ष्य से यही से प्रभावित हुना हो कि कहना चिंता स्थानीय सरकार से व्यक्त करल बा विभिन्न दिन के बैठल प्रदेश मंत्रिपरिषद के बैठक से सेटी टीकापुर लमकी चुहाव महाकाली प्रादेशिक अस्पताल विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूप में प्रयोग करना स्वीकृति दिलवा यागी विश्वविद्यालय से चिकित्सक शिक्षा आयुक्त में स्वमूल्यांकन फारम बुझा के सेती टीकापुर महाकाली अस्पताल आबद्ध करने संबंध में सामाजिक विकास मंत्रालय के सहमति लेल मंत्रिपरिषद के पाचक निर्णय संगे लमकी चुहा प्रादेशिक अस्पताल हेफे विश्वविद्यालय संगे जोड़ना कहलवा सामाजिक विकास मंत्रालय के समेत अस्पताल विकास तथा चिकित्सक शिक्षा महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर नीरा चर्याल के अनुसार विश्वविद्यालय से अपने शिक्षण अस्पताल के रूप में संचालन नयेसम चिकित्सक शिक्षा के लाख आवश्यक मापदण्ड पूरा करना प्रदेश के अस्पताल ही समेत निश्चित शर्त सहित उपलब्ध कराइना निर्णय करल बा वहां के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष के लाख अस्पताल में उपलब्ध कराइना आवश्यक पड़ने से प्रदेश सरकार से जौनसुके बेलाफे सहमति अन्त्य कर सकना हो विश्वविद्यालय से वो अस्पताल में पूर्वाधार जनशक्ति अनुसंधान सेवा के लाख सहयोग करना शर्त धरल बा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पांच फिर से भी सुन तेरा भी सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाग एम
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो
2: बेला भागना चावन जी अब जा पाव दे चु तो अब समा बनी घर में सकी न सकी सब काम करनु पर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जन्म परे जस्तै लाग्छ
1: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान MBBS MD न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ ECG र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: सुदूरपश्चिममा जलवायु उत्थानशील तथा विपद पूर्वानुमानमा आधारित भर्ती कार्यमा स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्न प्रतिबद्धता जनाएकोमा काली कैलालीकै धनगढ़ीमा आयोजित प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा सरकार रलखुक्रा 11 बुँदे संकल्प सहित पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व प्रति कार्य मा प्रदेशकै विपद व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्न प्रतिबद्धता जनाएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्यकै स्थानीयकरण तथा अभ्यास सम्बन्धी संवाद भाषेकी प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य प्रदेश हो, स्थानीय तहमा समेत नीति योजना बजेट हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न उल्लेखनीय समेत कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरिबा पुस्तक पूर्व सूचना प्रणालीमा निर्माणमा सहयोग प्रणाली तथा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य सम्बन्धी संयन्त्र सुदृढ बनाइती समुदाय स्तरसम्म सूचना पुगेन प्रतिबद्धता जनाएकोमा विपदकी जोखिममा रलक महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता रहल व्यक्ति तथा और संवेदनशील समूहकै सहभागिता औ संरक्षण प्राथमिकता देना विषयमा फे प्रतिबद्धता पत्रमा समेत गिल्बा उस्तहकरकै विपद जोखिम व्यवस्थापन केलाक जलवायु परिवर्तन तथा पूर्वानुमान सम्बन्धी तथ्याङ्क सूचना प्रविधि अनुसन्धान असल अभ्यासकै समेत नियमित साथासाथ गर्न हो सहयोग गर्न तीनू तहकै सरकार बीच समन्वय हो विकास साझेदार निजी क्षेत्र शैक्षिक संस्था हो नागरिक समाज हुकन संगे सहकार्य हे थप सुदृढ बनाइन प्रतिबद्धता जनाइल्बा। तीन वर्ष आगेसम्म 1 लाखमा समेत टोलामा कारोबार हुना सोनकी मूल्य 2.5 से लेकर 3 लाखसम्म कारोबार हुइटिबा सोनकी मूल्य धेर हुल पाछे व्यापारी फे खासै सन्तोषजनक नै रहल बतोइटै सुनिता सुन चाँदीकी संचालक रमेश सोप आजकल कबु कबु केल व्यापार हुना करल सोनकी मूल्य उपभोक्ता हुक्र नै ढेरल कोर्स्यालमलमा पटिरलक बतैले बाटै औरा सुन चाँदी व्यवसायी गोपाल सुनार सोनकी मूल्य बढ्के व्यापारमा समस्या हुइलो सोनकी मूल्य घटलसे उपभोक्ता व्यापारी दुनू जहन मजा हुना बटोले बाटै अशोकका व्यापारी आजकल पुराण गर गहना केल मरमत करके धनती रहल पीआर सुनचांदी के संचालक प्रकाश शाह के अनुभव बाटिन। अस्तका सामुएल ज्वेलर के संचालक शोभा थापा भर बर्खा उरायल पाछे आजकल व्यापार सन्तोषजनक रहल बटोले बाटे। आजकल व्यापार सन्तोषजनक समेत नै रह दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक देव बहादुर सुनार के कहेबा व्यापार व्यवसाय बढ़ाएतलाक स्वदेशमा नै रोजगारी के अवसर ररक सेफे मनैन रोजगारी के लग यी वैदेशिक रोजगार में रलक ओर से व्यापार व्यवसाय में समेत यही कारण से असर पड़ते रह वहां के कहेबा। करदाता प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत के समेत साउन महिनामा पहिल 15 दिन के बम्फर उपहार के नतिजा सार्वजनिक करबा। कञ्चनपुर के पुनर्वासमा शिव कृष्ण जनरल स्टोर के से 250 रूपया के सामान खरीद करलक व्यक्ति हेमराज जोशी 10 लाख रूपया के उपहार जितल बाटे। कूपन नम्बर 007-315-254-493 मा उपभोक्ता से 10 लाख रूपया जितल के वहां साउन 7 गते के दिन सामान किनल है और 15 जाने फिर 1-1 लाख रूपया उपहार जितल बाटे। आंतरिक राजस्व विभाग से काली अर्थ मंत्रालय में एक कार्यक्रम करके उपहार विजेता के बारे में जानकारी देलक। करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना अन्तर्गत उपभोक्ता हुकरन बिल लेना बानी के विकास करेन हो कर प्रणाली है थप प्रभावकारी बनेने उद्देश्य से यी योजना संचालन करलक बतैले बाटे। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी से सावन एहर माघ हुलक एलपी गैस के अभाव समेत रहल बटोल बाटे। पूरा सिलेण्डर बिक्री हुई लागल पाछे बजार में भारी मात्रा में केल एक पटक माघ बढ़लक अभाव रलक बटोले बाटे। प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक सुनने तथा विशेष समय में उठल प्रश्न के जवाब में वहां बजार में एक पटक माघ बढ़लक ओर से अभाव हुई बटोले बाटे। हाल 58 ग्यास उद्योग भण्डारण क्षमता के 10,166 मैट्रिक टन रलको वहां बतैतियालबाट माग अत्याधिक रलक कारण वितरण में देखगेल समस्या समाधान के लाग भारत सरकार है कोटा बढ़ेना आग्रह करती। मंत्री कुमारी से परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत आवश्यक सहजीकरण के लाग आग्रह कर बाटे। खोज खबर माए घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
6: तपसिल
7: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
6: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
7: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
6: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
7: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
6: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
7: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
8: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
9: ग्रीष्म टेरेसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो,
10: हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा

0: ग्यास सिलिन्डर चाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली सञ्चालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080।
1: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
2: मई नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। सरकार से खाना पकेना एलपी गैस के समेत लुकायल तथा कालाबाजारी करना बिग्रेटा है हदय सम की कार्रवाई करना चेतावनी दैगिल बा। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से कृत्रिम अभाव समेत सृजना करना हो टोकल मूल्य में से फिर ढेर मूल्य ले से करा निगरानी करना जनायल बा। उपभोक्ता हुकरन कोनो समस्या पर्ल से टोल फ्री नम्बर 1137 मा वा लगे के प्रहरी कार्यालय में उजुरी करना विभाग से अपील करल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक के आज के वैदेशिक मुद्रा दर के विनिमय दर निर्धारण करल बा। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी डॉलर एक के खरीदर 152.04 पैसा और बिक्री दर में 152.64 रूपया निर्धारण करल बा। उसको यूरोपियन यूरो एक के खरीदर 175.27 रूपया और बिक्री दर में 175.96 रूपया करल बा। यूके पाउंड स्टर्लिंग एक के खरीदर में 204.36 रूपया और बिक्री दर 205.16 रूपया। स्विस फ्रैंक के एक के खरीदर में 187.59 रूपया और बिक्री दर में 188.33 रूपया कायम करल बा। अस्ट्रेलियन डॉलर में एक के खरीदर में 107.04 रूपया और बिक्री दर में 107.46 रूपया। कैनेडियन डॉलर एक के खरीदर में 108.45 रूपया और बिक्री दर में 108.88 रूपया। सिंगापुर डॉलर के एक के खरीदर में 118.67 रूपया और बिक्री दर में 119.14 रूपया तोगिल बा। जापानी यान मा समेत 10 के मूल्य खरीदर में 9.60 रूपया और बिक्री दर में 9.64 रूपया समेत कायम करल बा। कलसे चीनिया युआन एक के खरीदर में 22.53 रूपया और बिक्री दर में 22.72 रूपया। साउदी अरेबियन रियाल में एक के खरीदर में 40.50 रूपया और बिक्री दर में 40.66 रूपया। कटारियन रियाल के एक के खरीदर में 41.72 रूपया और बिक्री दर में 41.89 रूपया कायम करल बा। उसके केन्द्रीय बैंक के अनुसार थाई भाट एक के खरीदर में 4.60 रूपया बिक्री दर में 4.62 रूपया। उसके यूए दिराम में एक के खरीदर में 41.40 रूपया और बिक्री दर में 41.56 रूपया। उसके मलेशियन रिंगेट एक के खरीदर में 37.16 रूपया और बिक्री दर में 37.31 रूपया। साउथ कोरियन में वन 100 के खरीदर में 10.74 रूपया बिक्री दर में 10.78 रूपया। उसके स्वीडिश क्रोनर में एक के खरीदर में 16.02 रूपया और बिक्री दर में 16.09 रूपया। डेनिश क्रेनर में एक के खरीदर में 23.45 रूपया और बिक्री दर में 23.54 रूपया तोगेल बा राष्ट्र बैंक से हांगकांग डॉलर में एक खरीदर में 19.38 रूपया और बिक्री दर में 19.16 रूपया कुवैती दिनार में एक खरीदर में 495.08 रूपया बिक्री दर में 497.04 रूपया बहराइन दिनार में एक खरीदर में 403.24 रूपया वाकलस बिक्री दर में 404 रूपया 83 पैसा ओमानी रियाल में एक खरीदर में 394 रूपया 89 पैसा वाकलस बिक्री दर में 396 रूपया 45 पैसा कहलवा भारतीय रूपया 100 के खरीदर में 160 रूपया और बिक्री दर में 160 रूपया 15 पैसा तोकलवा राष्ट्र बैंक से विनिमय दर है आवश्यकता अनुसार जोनसुके समय में फिर संशोधन कर सकता जनाइलवा वाणिज्य से टोकलक विनिमय दर भर फरक हो सकता और अध्यावधिक विनिमय दर में केन्द्रीय बैंक के वेबसाइट में उपलब्ध समय थीना जनाइलवा यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से शुरू पश्चिम में 4 प्रादेशिक अस्पताल है सहित 10 स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संगे आबद्ध करना सरकार के निर्णय सोन की मूल्य उच्च समेत बढ़लक व्यापारी हुक्रा व्यापार में संतोषजनक नहीं रलक टीकापुर व्यापारी के कहाई पूर्वानुमान में आधारित विपद प्रतिकार्य है स्थानीय तह में संस्थागत करना प्रतिबद्धता हो ग्यास लुकैना और ढेर मूल्य लेकरण हदयसम की कार्रवाई करना सरकार के दावी लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी बिदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम सुनते राम राम।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी घुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठो से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था?
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उड़ोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिया रही थी ना कबू पेंसिल हेरा रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा होने बारे को सूचना
5: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिवार का दिन तपसिल को स्थान र समय में होने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थिति का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं
4: साधारण सभा होने स्थान टीकापुर योगाश्रम को हल ब्लक नंबर 18 समय बिहान 11 बजे
5: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091 560 892

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उ मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर हुई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आज का कना हो। बाबा के उष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला अनल से लड़का सामान निहरे।
1: ओहो, ये बुढ़ाने में का हुई थी, जरम भर भर भर थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कापी हेरी थी, ना कबू पेंसिल हेरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहे आनल झोला जस काटस बाटिन। ये बुढ़ो ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया। मैं अब नहीं जाइबू रत गैया झोला उद्योग में। रत गैया झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर मर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: आज तिमी मेरे वरीपरी किन घुम्दैछौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड्के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना राशन का गर गहनाहरु पाइन्छन् सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन सन साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98684014799 98246025 अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98246628825
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज
7: कविता यदि सक्छु भने मलाई बिर्सने प्रयास गर सायद मैले यसो भन्दा तिम्रो मन दुख्छ होला मेरो पनि त मन हो सम्झ त कुनै दिन तिमीले पनि मलाई यस्तै भनेकी थियौ

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँभरिलाई।
1: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल?
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
1: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुइन कि गोङ्गुवा बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे के संगे के संगे के संगे कठुआ के कठुआ के आलमुनियम के पल्ला हो द्वार फेल लगा दे।
2: मिलन आलमुनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848513426।

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयके अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनारमे पशु चौपाए नै बाँधेबी, सड़क किनारमे मल वस्तु नै कुरा देबी, साथे सड़क किनारमा पशु चौपाए बाँधके ढुंगा बालुवा गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुइले से एकर जिम्मे

0: छी फिर चर्पी भर गिलका गिलका करना हो का
1: चर्पी भरलो से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपना कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीव 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने हुकन सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सम्र पात्र और नेपाली पात्र फिर सुन्टी रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से उज्यालो बहुद्देशीय सहकारी संस्था शक्तिद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन। डलेखमा ट्रक के ठक्कर में से मोटरसाइकिल के चालक की मृत्यु। कालीकोट में वाईफाई नदी लकटी स्वास्थ्य कर्मी पिटल तीन पकड़ाऊ। ओ बाजुरा के बड़ी मालिका मक भदौ 1 गति से पूजा शुरू मुख्य मेला 11 गते। उज्यालो बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड सत्ती के आयोजन में सत्ती में एक दिन स्वास्थ्य शिविर संचालन हुआ। शनिवार संचालन हुई लग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में ना कान घाटी के समस्या के उपचार तथा परामर्श प्रदान कर सहकारी संस्था बचत संकलन तथा ऋण लगानीकरण संघ अन्य सामाजिक कर्म परपना हुई लग ओ सामाजिक कार्य अंतर्गत ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन कलक सहकारी के व्यवस्थापक रामकृष्ण चौधरी बटीलवाट। स्वास्थ्य शिविर में नाक के एलर्जी हुई लग नाक में मासु पड़ेलक गैस्ट्रिक के कारण घाटी में अटकना समस्या हुलक कान के जाली पुआल पलक बिरेमेहकुरा बढ़ी देखलक। शिविर में सहभागी नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर कपिल शाही जानकारी दलवाट। शिविर में अलग चेक जांच करेलक बिरेमेहकुरा यदि ऑपरेशन कर पड़ना अवस्था देखल से बीएन अस्पताल नेपालगंज विशेष छूट में ऑपरेशन करना योजना रहलवा। शिविर में चेक जांच करल कुछ बिरेमेहकुरा ऑपरेशन कर पड़ना देखगिल वहां हुकर विशेष छूट में ऑपरेशन करकलाक बीएन अस्पताल नेपालगंज रेफर कर दिलक। अस्पताल के प्रबंधक संचालक राम बहादुर बोहरा जानकारी दिलवाट। एक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अपना स्वास्थ्य थिरबढ़ी सेवा लेलक आयोजक उज्यालो बहुद्देशीय सहकारी संस्था सत्ती के अध्यक्ष प्रांकुश चौधरी बोटिलवाट। उज्यालो बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड के सत्ती के आयोजन में संचालन हुलक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बीएन अस्पताल नेपालगंज के प्राविधिक सहयोग रहलवा। सहकारी संस्थाओं का बचत तथा ऋण के संग सामाजिक उत्तरायित्व के काम फेकर पड़ना हुआ वह अनुसार सहकारी संस्था के समुदाय में ढेरसिन किसिम के सामाजिक काम कर पड़ना कर लुलवाट। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बाजुरा के बड़ी मालिका मंदिर में एक वर्ष भदौ 1 गति से नई पूजा आज शुरू होना हुआ। मुख्य पूजा फे भदौ 1 गति होना मंदिर के पुजारी नेत्र उपाध्याय जानकारी दिलवाट। मुख्य पूजा के दिन दर्शनार्थी के अत्याधिक भीड़ होना हुलक भक्तजन के सहजता के लाग यह वर्ष करीब 10 दिन आघ नई पूजा शुरू करना लगलग बाट। शुक्रवार जिला प्रशासन कार्यालय बाजुरा में आयोजित बड़ी मालिका बुढ़ीनंदा मेला व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वपक्षीय छलफल के क्रम पुजारी उपाध्यक्ष ओहबाड बुटिलोबाट हरेक वर्ष बड़ी मालिका के मुख्य पूजा में बाजुरा सहित देश के ढेरसिन जिला तथा छिमेकी देश भारत मसे हजारों भक्तजन पुग्ना गर्थ। गत वर्ष के लिए करीब 45,000 दर्शनार्थी बड़ी मालिका के दर्शन करलक तथ्य रहलवा। समुद्री सतह से करीब 4,200 मीटर ऊंचाई में रहलक बड़ी मालिका धार्मिक अवस्था संग प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण पाठक समय पर्यटन के रजाई में पड़न लगलक बाईस पाटन त्रिवेणी खेती बेटी विष्णुपानी धर्मद्वार तथा हिमश्रृंखला के मनोरम दृश्य यहां पुग्ना पर्यटकों के आकर्षित करना हुलवाट। खोज खबर में एकरी विश्राम विषम पाठक फिर से विश्व त्रिवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफे शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा। पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
3: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा प्रसव सेवा
3: ईसीजी सेवा
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
3: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
2: फोन नम्बर 9874827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा कैलालीकै टिकापुरकै सम्राट खनाल चर्चित रियालिटी शो द भोइस अफ किड्सकै फाइनलमा प्रवेश गर्नबाट बालबालिकाकै गायन क्षेत्रमा स्थापित गर्दै सोमा सुदूरपश्चिमसे फाइनल प्रवेश गर्न उहाँ एक बालक गायकबाट टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 के 11 वर्षीय खनाल गायक सत्यराज आचार्य नेतृत्वकै टीम सत्य मसे फाइनलमा प्रवेश गर्नबाट खनाल संघ टीम सत्य मसे कविना राई समेत फाइनल प्रवेशमा कलबाटी दैलकमा ट्रक सँग मोटरसाइकल ठोक्के मोटरसाइकल चालकके च्याप्के चालकके मृत्यु हुँदा दैलकके डुंगेश्वर गाउँपालिका 2 तर डुंगेश्वर बजार स्थित कर्णाली रास मार्गमा ट्रकको मोटरसाइकल ठोक्के हुलक मोटरसाइकल चालकके च्याप्के मृत्यु हुँदा कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका 8 के 41 वर्षीय प्रेम बहादुर रोकाया छेत्रीकी घटनास्थलमा मृत्यु हुलक जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दैलकके प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी नायक निरीक्षक वरिष्ठ सही जय सिंह गुरूङ जानकारी दलबाट कालीकोटके पलाता गाउँपालिकाके सञ्चालन कलक अस्पतालमा वाईफाई चलेन नैदेलक कति स्वास्थ्य कर्मीकी ऊपर कुटपिट कलक आरोपमा 3 जना पक्राउ पर्नबाट कालीकोटके प्रहरी शुक्रबार पलाता गाउँपालिका 9 स्थित पलाता अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सकी ऊपर हातपात कलक आरोपमा 3 जना पक्राउ कलक जन्मबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटके जारी कलक विज्ञप्तिमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सकी ऊपर दुर्व्यवहार अभद्र व्यवहार गर्न तथा अस्पतालमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न समान तोडफोड कलक आरोपमा 3 जना नियन्त्रण मण्डलको उल्लेख बा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटकै सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुरेश खत्रीकी अनुसार घटनाबारे अनुसन्धान हुटिरहल बा प्रहरीकी अनुसार शुक्रबार दिनकै करिब 1 बजे 14 र 15 वर्षकै 11 के 2 भाइ अस्पतालकै वाइफाईमा मोबाइल जोडके ओपीडी लगा गेम खेलिरहल रहे चिकित्सकके अस्पताल परिसरमा से बाहिर से आएकी मोबाइल चलेना से उहाँके ऊपर उहाँको चिकित्सक संग विवाद गर्ला रहे खोज खबरमा फेर से विश्राम विश्राम पाछ फेर से विश्वन्तिर विश्राम मुदायक रेडियो टिका फर एफएम
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
5: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिल्बो मिल्बो नि करत का कैना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो कना फेरो ना पट्टासु पट्टासु गुर बनैल बाट आल आलम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगवा बुढो हो ना कबु कहुर घुम जाए त था पाए
6: यूपी भीसी ब्रांड के मौका बका बकवा पार्टिसन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको

0: कार्यक्रममा सहभागी भइदिने बारेको सूचना। नेपाल आदिवासी उत्थान समाज जानकी एक दुर्गौली कैलालीको आयोजना र जानकी गाउँपालिकाको सहकार्यमा 32 अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउन यस पालिकाभित्रका आदिवासी अगुवा बुद्धिजीवी युवा महिला वर्गहरूबीच आदिवासी भाषा संस्कृति पहिचान र संविधानमा प्राप्त अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा युवा महिला अगुवा वर्गहरूको सक्रिय सहभागी हुने गरी पौराणिक गीत कविता पौराणिक कला तथा भेषभूषा सहित उपस्थित भइदिन हुन विनम्र अनुसहित सादर निमन्त्रणा गरिन्छ। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी रहनुहुनेछ। कार्यक्रम हुने स्थान जानकी गाउँपालिका एक कृषि हाट बजार दुर्गौली। कार्यक्रम हुने मिति साउन 24 गते। समय बिहान 11 बजे। नेपाल आदिवासी उत्थान समाज दुर्गौली एक कैलाली।
1: बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस त रह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261।

0: खोजत खोजत राजापुर तक खोजिन
1: कहाँ से खोज लो गोचुआ
0: आप दे बताए अरे टीकापुर खोजिन नारायणपुर फे खोजिन धर्मापुर और प्रतापुर में फे खोजिन खोजनो जाके थापापुर में खोजनो जो के मोहनपुर में थे होय मोर मन परल होय मोर मन परल मन रखनी भेटेनु जोशीपुर में होय मोर मन परल।

0: रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ अर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864 41208 ओ 9846 39261।
1: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे कुछ सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जाइबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
5: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नहीं करत का कहीं ना हो का
4: मिस्तरान बर्जनऊ का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
6: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
4: शिविर सञ्चालन हुने स्थान वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म,
3: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
4: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
3: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
5: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
3: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 98485-018-88, 98485-015-56 र 98486-13434।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।